तो एकायुक हो तो अरोक हो तो एकायुक हो तो अरोक हो तो लौकित हो तो परमेन्द्र महाराज स परम राजिनी तिथि किच तिथि कम तिथि लोचयो निच परमेन्द्र महाराज वरस परम राजिनी अवतु सप्त कौतम प्रभु।